Nathan, तुम्हें पूरी बेटा आती है Nathan, तुम्हें पूरी बेटा आती है Nathan, Nathan.